0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:05 होए ने ज्ञान अमृत

0: एसी भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 6:30 होए ने, हुण पेश है जी अज का खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगी। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग भड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतरपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां नव मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। षड् जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम् आहत्य पञ्चदश मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिराष्ट्रियसहाय्यकोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतमपरिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः भारत अमेरिका व्यापारवार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोधसम्बद्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि, निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं सन्तुलितस्य वाणिज्यदृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां, कृषकाणां, श्रमिकाणाम्, उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापारसन्धेः सम्पादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापारप्रतिनिधिना जेमिसन् ग्रीर् इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रदा वार्ता अभवत्। भारत ऋतुविभागेन अद्यपर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचलप्रदेशे, छत्तीसगढे, झारखण्डे, नागालैण्डे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिमबंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हतीति। भारतीयपुरुषक्रिकेटदलम् अद्य बर्मिंघम् नगरस्य एज्बेस्टन् नगरे त्रिक्रीडाश्रृङ्खलायाः प्रथमायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रियक्रीडायाम् आतिथेयम् इंग्लैण्डदलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीयसमयानुसारम् अपराह्ने 3:30 क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराटकोहली, रोहितशर्मा च भारतीयदलं सुदृढं कर्तुं पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैण्ड इंग्लैण्ड देशयोः विरुद्धं 20-20 अन्ताराष्ट्रियश्रृङ्खलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन् गिल इत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे 21 दिनाङ्के लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख समाचार। औरतों के क्रिकेट विच हरमनप्रीत कौर की अगवाई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रचा। लॉर्ड्स विखे खेडे गए इको एक टेस्ट मैच विच मेजबान इंग्लैंड 270 दौड़ा के नाल हरा के जित अपने ना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क आवाजाई अते शाहराह मार मंत्री नितिन गडकरी अते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रैस का उद्घाटन किया। पंजाब दे गैर सहाई प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दीआं फीसां दी नेमबंदी बारे त्रिमिमिम आर्डीनेंस 2026 नूं राजपाल दी मंजूरी मिली, नवां कानून लागू। भारत ते जापान ने एक आज़ाद, खुले ते नेम आधारित हिंद प्रशांत खेतर प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने जनतक खेतर दे बैंकां नूं प्रवासी भारतीयां तक अपनी पहुंच वधाउण अते नवें जमा रकम उत्पाद शुरू करन दे लई किया है। अमरीका अते ईरान दोवें ही होरमूज़ पणजोर ते कंट्रोल दा दावा किया गया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विखे वन विभाग दे 516 कच्चे वर्करां अते ड्राइवरां नूं पक्का करन

रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर लैंडफिल पिलग्रिमेज, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें वधिया लगदियाँ ने, चंगा लगता है कि असं एनवायरमेंट बारे सोच रहे हैं। पर इधर टेलर स्विफ्ट बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, पर इस बंदी ने एक यहोजा काम किया है जिदे नाल एक बारी फिर तो छा गई है। कहिंदे कि 3 जुलाई नू न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन दे विच टेलर स्विफ्ट ते ट्रैविस कैलसे दा विआह होया। विआह दे करके बहुत सारे फैनस टेलर स्विफ्ट नू देखना चाहुंदे सी, उहनां दी झलक जिहड़ी पौड़ा चाहुंदे सी, सारे जमा सी। इस दौरान न्यूयॉर्क के कलाकार ने नेड़े पिया जिन्ना भी कूड़ा करकट सी सारा इकट्ठा कर लिया। हुण उस कूड़े दे विच की सी, बोतलां दे टक्कन, सिगरेट दे टुकड़े, पुलिस टेप, स्ट्रॉ, प्लास्टिक चम्मच, रिंग पॉप कैंडी दा रैपर हो गया या सिंगल एयरपोर्ट, बहुत कुछ।

0: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਏਕ ਏਕ ਬੂੰਦ ਕੋ ਹਮੇ ਬਚਾਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਆਗ੍ਰਹ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਕਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹਮ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ।
2: ਜਲ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਹੈ, ਆਈਏ ਘਰੋਂ ਆਫਿਸੋਂ ਮੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਏ, ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਟ ਔਰ ਸ਼ਾਫਟ ਬਨਵਾਏ, ਅਨਉਪਯੋਗੀ ਬੋਰਵੈਲੋ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਜਲਾਸ਼ਯੋ ਸੇ ਗਾਦ ਨਿਕਾਲੇ, ਅਧਿਕ ਸੇ ਅਧਿਕ ਪੇੜ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਏ ਜੁੜੇ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਅਭਿਯਾਨ ਸੇ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

0: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: 10 of the 11 active missions.
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और

0: यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.

0: बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। अमरीकी फौज ने कहा है कि आज रात तो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मुड़ शुरू कर देगी। यह ऐलान होर्मुस पंजोड़ में जहाज़ा से ईरानी हमलों तो बाद फिर तो बने तड़ाव दरमियान आया है। अमरीका ने ईरान में कई टिकाणों पर भी हमला किया है, जिस कारण ईरान ने बहरीन, ओमान और कुवैत समेत पश्चिमी एशिया में जवाबी हमले किए ने। दूजे पासे ईरान ने होर्मुस पंजोड़ से अपना अधिकार जताया है ते अमरीका ने इस कदम को रद्द कर दिता है। ईरानी सरकारी मीडिया मुताबिक केंद्रीय सदर मुकाम के बुलारे ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोला फाकारी ने कहा है कि ईरान किसी भी स्थिति में अमरीका को होर्मुस पंजोड़ के प्रबंध में दखल देने की इजाजत नहीं देगा। अमरीका वालों ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी दोबारा लाने के ऐलान तो बाद विश्व पद्धर से कच्चे तेल दी कीमतों में तेजी नाल वाधा होया है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चे तेल दी कीमतां करीब 9.6% वध के 83.30 अमरीकी डॉलर फी बैरल हो गई। इस दौरान अमरीकी बेंचमार्क वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट करीब 9.4% वध के 78.41 अमरीकी डॉलर फी बैरल से बंद होया। होर्मुस पंजोड़ विचों लगन समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दो टैंकरां ते ईरानी क्रूज़ मिसाइलों के हमले में भारतीय चालक दल के एक भारतीय मैंबर की मौत हो गई और 6 होर जख्मी हो गए। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया से यह जानकारी दी। भारत का सब तो वड्डा तैयार कपड़े बारे आलमी सम्मेलन भारत टैक्स 2026 अज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे शुरू हो रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खेडा विच भारत की औरतों की जूनियर अंडर 21 हॉकी टीम आज इंग्लैंड के लिलशाल नैशनल स्पोर्ट्स सेंटर विखे बरतानिया दौरे के आखिरी मैच विच बेलजियम नाल खेडेगी। मर्दों के क्रिकेट विच भारत और इंग्लैंड विचकार 3-1 रोजा मैचों की लड़ी का पहला मैच अज बर्मिंघम विखे खेडे जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 शुरू होगा। भारतीय टीम विच बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम वीरवार को कार्डिफ विच दूजा एक रोजा मैच खेडेगी। आखिर च खास खबरां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के अस्थाई मैंबर वजों 2028-29 कार्यकाल अपनी चोण मुहिम अधिकारक तौर पर शुरू कर दी है। वियतनाम किश्ती हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैलानियों के देहों को देश वापस लिया गया है। पश्चिम बंगाल साहिल से बंगाल की खाड़ी में किश्ती पलटन कारण 9 मछेरिया की मौत, 6 होर अजे भी लापता। ते अमरीका वालों लगातार तीसरी रात ईरान के हमले, ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी दोबारा लाने के अमरीकी ऐलान तो बाद विश्व पद्धर से कच्चे तेल दी कीमतों में तेजी नाल वाधा। इस नाल ही साडा ई बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। महक पंजाब दी इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतज़ार।
2: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेले प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
2: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
3: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
2: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
3: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
2: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया कर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
6: हुणे तुसी सुनिया सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9 बज गए ने। हुण पेश ने जी मुख खबरां।

फिल्म आज असी गल कर रहे हैं 1962 विच रिलीज़ हुई सदा बहार हिंदी फिल्म, जिस विच दिल नू छू लैन वाला संगीत, पापूरन कहानी, शानदार अदाकारी, सारिया दा सुमेल है। ते तद ही करके ये सिने प्रेमिया दे दिल विच वसन वाली सदा बहार फिल्म भी है। ये फिल्म जिसका निर्देशन विजय पठोना ने किया। मुख भूमिकावां इस विच मनोज कुमार ते माला सिन्हा जी। नाल ही नाल इस फिल्म दे विच संगीत दिता महान जोड़ी शंकर जयकिशन होना ने, ते इस दे गीतकार शैलेंद्र ते हसरत जयपुरी होनी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, उही फिल्म जिस दे गीत अजे भी गुनगुनाए जांदे ने, ते जदों गुनगुनाए जांदे ने ना उदों मुखां ते मुस्कुराहट ले आंदे ने। आओ फिर करिए शुरुआत। मैनू पता है फिल्म दा नाम दस दुनिया दस दुनिया, हरियाली और रास्ता। ये फिल्म जिसनों से आज चुने हैं तुहाडे तक इस दे गीत पहुँचाने दे लई, ते लो फिर लता मंगेशकर ते मुकेश होना दी आवाज़ दे विच इस फिल्म दा ये खूबसूरत नगमा। इसे नगमे नू फिल्म दे विच सब तो पहला रखा गया है।

प्रोग्राम चल रहा है जी, एक ही फिल्म तो बिल्कुल जी। गीत सुनवा रहे हैं आज असी तुहानू हरियाली और रास्ता फिल्म दे। इस फिल्म दे विच मनोज कुमार होना नू उना दे अभिनय लई इन्नी ज़्यादा सफलता मिली कि हिंदी सिनेमा दे प्रमुख अदाकारां दे विच वो शामिल हो गए। बाद विच वो देशभक्ति दियां फिल्मां करके भारत कुमार दे नाम दे नाल जाने जान लगे। तो ये फिल्म सिगी जिस दे विच उना दे किरदार नू प्रमुख तौर ते सराया गया सी। तो इत्थों ही उना दे सफर दी अगली शुरुआत हुई सी। आओ सुनदे आं हुण इस प्रोग्राम दा ते इस फिल्म दा एक होर खूबसूरत गीत। इस गीत नू अपनी आवाज दिती है इस फिल्म दे गायक कलाकारा ने। बहुत ही खूबसूरत फिल्म

हरियाली और रास्ता फिल्म दे विच हर एक गीत जिहड़ा है वह बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल फिल्माया भी गया है। ते इस गीत दे जरिए दार्जिलिंग दियां खूबसूरत जिहड़ियां चाय दे बगान दियां महकां ने कीतियां जा सकदियां ने।

0: बिल्कुल सरोते हो, मोहब्बत सिर्फ मिलन दा नाम नहीं, सगो यादा इंतज़ार खामोशी ते रूह दे रिश्ते दा नाम है। इसे ही गज़ल दे नाल अज दी गज़लां दी ये महफिल हुण इत्थे ही खत्म हुंदी है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 10 बजे ने पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे अस्थाई मेंबर वजों 2028-29 कार्यकाल लई अपनी चोन मुहिम अधिकारिता तौर ते शुरू कर दिती है। वियतनाम किश्ती हादसे दे विच मारे गए 15 भारतीय सैलानियां दियां देहां नूं देश वापस लियांदा गया है। पछमी बंगाल साहिल ते बंगाल दी खाड़ी विच किश्ती पलटन कारण 9 मछेरियां दी मौत, 6 होर अजे भी लापता। अमरीका वालों लगातार तीसरी रात ईरान ते हमले। ईरानी बंदरगाह ते नाकाबंदी दोबारा लगाउण ते अमरीकी ऐलाना तो बाद विच विश्व पद्धर ते कच्चे तेल दियां कीमतां विच तेजी दे नाल वाधा। पंजाब दे गैर सहाई सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दियां फीसां दी नेमबंदी बारे तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 नूं राजपाल दी मंजूरी मिली, नवा कानून लागू। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विखे वन विभाग दे 516 कच्चे वर्करां अते ड्राइवरां नूं पक्का करन दे नियुक्ति पत्र सौंपे। पटियाला पुलिस वल्लों 15 पिस्तौलां अते 30 कारतूसां समेत 4 नौजवान गिरफ्तार। जलंधर पुलिस वालों पंजाब पुलिस विच भर्ती कराउण दा चांसा दे के 31,50,000 रुपए दी ठगी करन वाले फर्जी IPS अधिकारी अनमोल रतन नूं शाहकोट पुलिस ने उसकी पत्नी अते पिता समेत गिरफ्तार कर लिया है। अज मशीनीकृत साफ सफाई सिलसिले लई राष्ट्रीय कार्रवाई स्कीम दी 3 साल पूरा होण ते तीजा नमस्ते दिवस मनाया जा रहा है। मर्दा दे क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड विचकार 3-1 रोजा मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज बर्मिंगम विच खेड़िया जावेगा। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दिया रमजा बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तो सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 10:04 होए ने, लैके हाजिर हो गए हाँ जी तुहाडा पसंदीदार प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनने वालों नूं रुपिंदर दी प्यार भरी नमस्कार। जी हाँ, प्रोग्राम उ जिस दे विच तुहाडियां फरमाइशां करनियां ने पूरिया, जिस दे विच तुहाडे नाल करनी है गलबात, क्योंकि फोन कॉल दे जरिए तुसी इस प्रोग्राम दे विच जुड़दे हो साडे नाल। 0181-2342-173 नंबर कर रहा जी तुहाडा इंतज़ार। ते लो प्रोग्राम दी शुरुआत कर दिंदे आ ताल फिल्म दे इस खूबसूरत गीत दे नाल।
4: तनक दिल तों तनक दिल तों तनक दिल

0: प्रोग्राम चल रहे है जी, तुहाड़ी ही फरमाइश आंदा 0181-3142-172 नंबर मिला के, हाँ 73 नंबर मिला के पहुंच गए ने साढ़े अज दे अगले कॉलर। हेलो,
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: टॉम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सोम दत्त
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद भैन जी।
0: लो सोम दत्त जी, फिर प्रोग्राम दे विच फोन मिल गया है, ते दसो जी गीत केड़ा मिले हुन।
1: गीत सुना है, हीरो मूवी का गीत है जी, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
0: बिल्कुल जी, यही गीत सुनावांगे। प्रोग्राम दे विच
1: बिल्कुल,
0: तुसी
1: बहुत
0: फोन
1: बहुत
0: मिलाया,
1: धन्यवाद जी। श्रोते
0: शुक्रिया।
1: बार ट्राई करना चाहिए, फिर फोन लग जाता जी।
0: जी जी बिल्कुल, खास टिप मैनू लगदा सारे नोट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल फोन मिलाउंदे रहो, लगेगा जरूर, ते अपनी फरमाइश का गीत जड़ा है वो जरूर सुन पाओगे, बस लगातार मेहनत।

0: ECG ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी

0: हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च सानू कई सारे मैसेजेस आए ने साढ़े व्हाट्सएप नंबर ते। जे तुहाडे कोल नंबर नहीं हैगा ते तुसी भी नंबर नोट कर लो 94655 36 0 77।

0: ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी। तो इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया जी ज़िला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलवीर सिंह दा। अगले साथी ने सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रतिशा संधु ते मैक्स ए लिखते हैं जी हरगोबिंद नगर नवांशहर तो। चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शेफाली, शेफी ते मास्टर डेविस, मनदीप सिंह, दीपा बस स्टैंड जलालदीवाल तो ये लिखते हैं जिला लुधियाना तो। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो लिखते हैं पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर ते विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र तो नारायण इंगले, सोपान ताइडे ते आशीष मुहरकर। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, जे एस नायक, बेअंत सिंह लिखते ने बस स्टैंड जलालदीवाल जिला लुधियाना तो। बजतपुर कटियावाली फाजिलका तो विजय गोयल ते दादा अश्वनी गोयल, बजतपुर कटियावाली फाजिलका तो विजय गोयल, अश्वनी गोयल ते धर्मपाल गोयल। अगले साथी ने पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर अबोहर जिला फाजिलका तो रमेश चावला, रायजल, हेजल, विहान चावला, आस्था, जयश्री ते संतोष चावला, हेमंत, दीपक, रमेश चावला, रिज्जू, बब्बू, वीहू चावला। मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। पिंड तंगौरी जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत सिंह, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान ते गर्वी ते हिमाक्ष ए लिखते ने जी जोधपुर राजस्थान तो। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश तो मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बड़ाना ते सुदामा नगर खंडवा तो लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु ते मुकेश जगताप। वैष्णव कलोनी सनावत तो लिखते ने मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमश खन्नी, रमेश गौड़ ते मोहम्मद शादाब खन्नी। सदूल शहर तो वेदपाल, इंदुबाला, रकेश, शकिला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई ते अर्पित भाड़ू। पिंड सावन खेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र कुमार ते जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें सरतूल सिकंदर दी आवाज़ विच।

तो जनक राज लिखदे ने कोर शमीर तो नछत्तर सिंह लालवाई दर्शन सिंह पथराला बलदेव सिंह भुखियावाली सुखदीप सिंह गिल ते गुरमीत सिंह लैपो ए लिखदे ने जी पिंड ढिलवा जिला बरनाला तहसील तपा मंडी तो। अगले साथी ने मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिद्दा ममता रानी अभिषेक मिद्दा ते दिव्या हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो। सुरेश मावदे श्रद्धा ते मानसी ते वर्षा मावदे लिखते ने जी साई जी साई की शिरडी तो। अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा करमजीत सिंह लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा ते रानी सोनू ते रजनी भरत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंदु भूषण संस्कृति ते पौरव शे लिखते ने वाइटफील्ड बेंगलुरु तो। अगले साथी ने पिंड बिल्लीमार तो प्रेम कुमार परवीन रानी अलीशा अरमान राकेश कुमार ते ममता रानी बठिंडा रोड मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित लकी तानिया नारंग न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा सीमा शर्मा प्रिंस शर्मा मलोड तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल कैनेडा तो दीशा मोहला जगतार जग्गा तौला तो किंगरा तो। अगले साथी ने बाल कृष्ण शर्मा प्रवीण शर्मा मुनीश शर्मा राहुल शर्मा पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो। महमगेट नाभा तो लिखते ने सोमदत्त नाभा कैरव नाभा ज्योति राणी ते गुरमंत पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता लशिक यशिका ते माता विद्या देवी डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर ते कुमार गौरव मंदूरकर गांव फ्रांसी हिसार तो राजकुमार दूदी प्रमोद कुमार दूदी ते पुष्पेंद्र कुमार दूदी संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल सानी लिखते ने पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो कृष्ण बागला आशा बागला सज्जन बागला प्रिंस रजनी आंचल ते वंश बागला लिखते ने जी पिंड ठेक कलंदर तो। ते अगला मैसेज है रमेश चंद्र चौहान जय नारायण चौहान तरुण चौहान ते प्रतीक चौहान दा सदर बाजार मारवाड़ बिला बिलाड़ा राजस्थान तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है जी कंठ कलेर दा गाया होया।

दाऊद सराय सहारनपुर तो अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्कर साबरी ते जरीफ अंसारी। अगले साथी ने जी, गांव खोखरा वाली तो विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी ते शगुन बारासा। महरा दरवाज़ा एटा तो नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी ते यशफ अब्बासी। अगले साथी ने गांव जाखोद राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, दीपक कुमार खटक ते कुमारी पूजा खटक। अगला मैसेज आया खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा ते नानक चंद मल्होत्रा। अगले साथी ने विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी ते वीकेपुरी। अगले साथी ने लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी ते रानी मानिकपुरी। ग्राम नागरा कोहरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ तो लिखते ने बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा ते बेबी आराध्या साहू। ते अगला मैसेज है GTP मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब तो मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समाहीना, शकीला, जैस्मिन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी ते सुराज ते मोहम्मद जावेद अंसारी दा। इस दे नाल ही मैनू निधि चुटनू तुसी आज दे ए मैसेज इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त देना। ए प्रोग्राम खत्म होण दा समा आ गया जी। बस चलदे चलदे सुनदे आ इक अखीरला गीत, गायक ने जी कंठ कलेर, ते आओ फिर इस दे नाल ही प्रोग्राम खत्म करदे आ। नमस्कार, हाजिर है कंठ कलेर दा गाया ए गीत। माफ करना, कंठ कलेर दे गीत तो बाद असी चलदे चलदे सुनदे आ रब्बी दी आवाज़ विच छल्ला।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें 1 नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को

0: शून्य से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया।

0: बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशार, चाबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जर्डन मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें 1 नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हुर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 348.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

8 बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। अठ बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र।

9:30 सुन सकोगे प्रोग्राम खेड संसार। अज इस विच तुसी पंजाब विच खेड सभ्याचार इस विषय ते विचार चर्चा सुन सकोगे। चर्चा करनगे रितिन खन्ना ते विनीत शर्मा। दस वज के 2 मिनट ते होवेगा शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। अज इस विच तुसी पंडित राम नारायण का सारंगी वादन सुन सकोगे राग मारवा विच। साढ़े 10 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम सरगम का। इस तो इलावा खबरां अपने निर्धारित समय ते पेश कीतियां जाणगियां। एसी साढ़े अज प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत में आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अकवामे मुत्तहदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायीद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान

0: में इक्तसादी और तिजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुंबासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में फिलिस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फिलिस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी है और सेहत तालीम सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तोसी शुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समुद्री मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और आटोकल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% तक टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इससे बरतानिया की मार्केट में भारतीय बरामदात की मुसाबकती सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टैक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल्कवामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आजाद तिजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे

0: बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: इफ्तिदाई तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वज़रा और टेक्सटाइल के वज़ीर मम्लिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी तजारत के शोबों में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप को भी दिखाया जा रहा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोल्ड की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफ्जाने सेहत इदारों को कोल्ड की बीमारी के तशखीस शुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरिक भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज में शिकस्त के बाद इस एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आदनाए हुर्मुज में हाल ही हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे आ फिल्म इश्क ज़ादे दा। इस गीत नू गाया विशाल डडलानी अते ट्रिया घोषाल ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सास में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

0: मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज़ जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के

0: इन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना

0: कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी राजकुमार ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सुणोगे।

सुरेंद्र कौर ते आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ में तुम सुन रहे थे खूबसूरत गीत पंडित जी की ये लाल मेरा। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई साढ़े तक साढ़े स्रोतिया वालों भेजी गई प्यार भरी चिट्ठिया पहुँच चुकिया ने। अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठिया भेजने वाले ने मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, बिट्टी जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, दीपक जैन।

मोहम्मद रफी ते आशा भोंसले की आवाज़ में तुसी सुन रहे सी खूबसूरत गीत आटा गुन के। प्रोग्राम की अगली फरमाइश ले सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने मोहम्मदपुर सोत्तर ढाणी रतिया तो जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन, कुशल्या राणी, गुरछिंदर बब्बू, कुलदीप, कीरत, भूषण खेड़ा, पायल, जशन बूक ते पूरा ही बूक परिवार। इस तरह ही रायण गली नंबर 3 राजस्थान तो रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णुदेव, राजवीर, जगवीर।

सब गावह गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समावला। हे सृष्टि दे जीवो, ओस गोविंद प्रभु दे गुण गायन करदे रहो, जो ओस दी कीर्ति विच ही समाया होया है। ए फरमान चौथे पातशाह साहेब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारी हुई राग कानड़े दीवार विच श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 1315 दे शोभनीक है। इसे करके साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं भी सब कुछ विसार के दिन रात सास सास प्रभु जी आप जी दे गुण गायन करदा रहा, क्योंकि सतपुरशां दी संगत विच मैनू ए विश्वास दृढ़ होया है कि प्रभु दा नाम ही आद तो अंत तक सहाई है, ते प्रभु ही जीव दे सदैव अंग संग है। राग आसा विच फरमान है, दिन पी गावाओ रैनी गावाओ, गावाओ सास सास रसनारी, सत्संगत मह बिसास होए हर जीवत मर्द संगारी। इस शब्द का गायन कीता है भाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: दिन पी गावो, रैनी गावो, गावो सास सास रसनारी, सत्संगत मह बिसास हुए, हर जीवत मर्त संगारी। इस शब्द गायन कीता सी पाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे ने। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता, जिचर हर रस पलै न पाए। श्री गुरु अमरदास जी मनुख नूं सुचेत करदे ने कि ऐ मनुखी जीव दी रसना, तू होरना होछे रसां पिछे गलतान ना हो, इस नाल तेरी तृप्ति नहीं होनी, प्यास नहीं बुझनी जद तक हर रस पल्ले नहीं पैंदा। इसे करके पंचम पातशाह भी राग सारंग विच उचारित शब्द विच साड़ी अगवाई करदे हुए जुगत दर्शाउंदे ने। रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, पलो नाम सुआओ। ए वार्ता सुना रहे ने प्रभ कीर्तन सिंह।
1: गुरबाणी दी ए पावन पंक्ति पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे सारंग राग विच उचारे होए अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 1220 ते अंकित शब्द विच्चों है। ए पंक्ति रहाओ दे बंद विच्चों है। पूरा बंद इस तरह है, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, भलो नाम सुआओ रहाओ। असी अपने जीवन विच कीते जाण वाले सारे कम्मां नूं दो हिस्सों विच वंड सकते हाँ। एक ओ जो करन नाल असी अपने जीवन नूं सफल करन दे रस्ते उत्ते अग्गे वध रहे हुंदे हाँ, अते सारे कम किसे ना किसे ढंग नाल सानू सफल होण दे योग बना रहे हुंदे हन। पर कुछ होर कम अजिहे भी हुंदे हन जो इस रस्ते दी रुकावट बन रहे हुंदे हन जां साडा समां निरारत गुआ रहे हुंदे हन। गुरमत विच एक सिख दे जीवन दा मंतव अकाल पुरख नाल एक मिक हो जाना दस्या गया है, अते इस दी प्राप्ति दा रस्ता प्रभु दे गुण गाउणा, प्रभु नाल प्रीत पाउणा, प्रभु दी प्रीत दी अवस्था विच उस दे गुण गाउंदे होए, उस दे गुणां नूं धारण करदे होए उस वर्गे ही हो के उस विच समा जाणा है। इसे करके एक जग्यासू लई प्रभु दे गुण गाउंदे रहना एक जरूरी किरिया है जो हर जग्यासू दे जीवन दा अटुट अंग है। जो जीवन दे होर लुभावने पर व्यर्थ कम्मां नूं छड के करना बनता है, जीवन दी सफलता दे राह ते तुरना सिर्फ उदों ही मुमकिन हुंदा है जदों सानू नाम सिमरन विच्चों मिलन वाला आनंद इन्ना चंगा लगन लग पैंदा है कि बाकी दे व्यर्थ कम फिर चंगे ही नहीं लगते। फिर मनुख अजिही अवस्था ते पहुँच जाता है कि मन कहिंदा है, मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ, आठ पहर प्रभ त्याए तूं गुण गोबिंद नित गाओ। अते जदों सानू ए आनंदमयी अवस्था बन जाती है तां फिर सानू अपने आप ही बाकी दे सारे काम व्यर्थ लगने शुरू हो जाते हैं। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तूं, मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रत्तियां मिलिया निथावें थाओ रहाओ, होर साध सब फीकियां मन तन फिक्का होए, विन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन होए। असी दुनियावी जीवन विच तां भली भांत यह गल समझते हाँ कि किहड़े काम साढ़े जीवन दे उस वेले दे मंतव नूं प्राप्त करन विच सहाई हुंदे हन ते किहड़े व्यर्थ हुंदे हन। पर समुच्चा जीवन सफल करन लई यह जरूरी है कि असी यह समझिए कि किहड़े काम अजिहे हन जो साढ़े समुच्चे जीवन की सफलता लई फलदायक हन ते किहड़े निफल हन। राम रसायण जो जन गीधे, चरण कमल प्रेम भगती बींदे, आन रसा सब दीसें चार, नाम बिना निफल संसार। पर जग्यासु लई अगला ये प्रश्न आ खड़ा हुंदा है कि ये ठीक है कि सानू सदा प्रभु परमेश्वर दे गुण गाने चाहिए हन, पर वो किहड़ा रस्ता है जिस नाल मेरे मन की अवस्था ऐसी बन जावे कि प्रभु परमेश्वर दे गुण गाने

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरदीप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा

चार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस

0: समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 6:05 होए ने। आओ हुण जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिस विच होणगियां कम दियां गल्लां। झोने की देखभाल बारे जानकारी देंगे डॉक्टर मनिंदर सिंह। सुरक्षित भोजन, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा थोड़े मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी, रोल ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन। वार्ताकार होंगे प्रियंका अग्निहोत्री। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 प्रोग्राम खेड संसार दे विच विचार चर्चा होएगी, पंजाब विच खेड सभ्याचार। चर्चा करेंगे रितिन खन्ना ते विनीत शर्मा। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे पंडित राम नारायण दा सारंगी ते वजाया राग मारवा। ते रात 10:30 हिंदी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम पेश करांगे सरगम। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। इस तो अलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समें ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा।
3: हाँ जी।
4: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कार आ जावांगे। हाँ
3: क्यों? पर मैं
4: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दियो, बच जाओगे।
3: इन्ने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
3: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
4: ओए,
3: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं पैसा ना भेजो।

0: हाँ जी पटवारी साहब लंघ गई है जी।
1: आजू आजू आजू बल साहब।
0: पटवारी साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। और सुनाओ बच्चे वालों की हाले चाले ने?
0: हाले चाले ठीक ठाक ने, बस तुसी सुनाओ।
1: पर अज बड़े परेशान जे नजर आ रहे हो, की गल होगी?
0: बस पटवारी साहब पूछो ना,
1: की गल होगी?
0: गल हुण की दसीए। मैं तुरन लगा इधर नू ते राह विच साडे गवांढी ने तारा राम जी,
1: आहो।
0: ते उहनां दी नूंह जिहड़ी आ उहदी सिहत ढिल्ली हो गई,
1: अच्छा।
0: ते उह विचारे बौंदड़े फिरन। उह मैनूं कहिण तूं गड्डी लै के आ,
1: अच्छा।
0: मैं हुण देखां मैं इधर नूं वी आउणा सीगा। गड्डी लै के उहनां नूं नाल लै के गया हस्पताल। हस्पताल तुहानूं पता हुण जांदिआं नूं कहिंदे आ वी भाई रुपया 50,000 रख दिओ इत्थे, उह मेरे वल देखण, मैं उहनां वल देखां।
1: अच्छा।
0: ते खर्चे दुखों विचारे, चलो रल मिल के असीं उहनां नूं उत्थे दाखल कराया जी, ते मैं इधर नूं आ गया। पर रस्ते विच आउंदा आउंदा मैं सोच रिहा सी कि बिना बचत तों जिहड़ा आ उह जिंदगी अज कल दे समें विच जिहड़ी कट्टणी आ उह किन्नी औखी आ।
1: बाल
0: सो
1: साहब गल तां सोचण वाली है,
0: बस इसे चिंतावां करके जिहड़ा आ अज आह हाल होया
1: तां
0: पिआ।
1: ही फिर
0: हाँ जी हाँ जी
1: इदां दी परेशानी जिहड़ी आ।
0: बस बस बस
1: वैसे बाल साहब जिंदगी च ना इंसान जिहड़ा है वो जिवें आपां कहिंदे ना बचत,
0: जी
1: ये करदे रहना चाहिए।
0: हाँ जी
1: क्योंकि अपने भविख दे लई,
0: हाँ जी
1: जदों तुसीं इदां दस्या भी कोई छोटी मोटी बीमारी या कोई इदां दा अणचाहा खर्चा
0: हाँ जी
1: जदों इदां आ जाता है,
0: जी
1: जे असीं थोड़ा बहुत बचा के रखे हुए ना,
0: बिल्कुल जी
1: तो फिर ये पैसा उस वेले बहुत ज़्यादा सानू सहूलियत दिंदा है।
0: बिल्कुल सही गल है जी
1: पर इंसान ना उस वेले नहीं सोचता,
0: हाँ जी
1: ये कहिंदा जी कि अज ही सारा कुछ खर्च कर लो।
0: अपने लोगों की वैसे आदत आ, वो कहें भी जदों अग लगी उदों खूह पट्टांगे।
1: ते जदों अग बुझाणी पैंदी है
0: हाँ जी
1: फिर औखा हो जाता है।
0: हाँ जी
1: वैसे ना साडे भारत देश दे विच
0: हाँ जी
1: ये बचत जिहड़ी है
0: जी
1: ये एक बहुत चंगी आदत है।
0: सही गल है जी
1: और इहदे लई मन्निया जांदा सी कि साडे जिहड़े बजुर्ग ने ना वो
0: हाँ जी
1: कहिंदे सी कि लोड़ वेले ये जिहड़ी बचत है कम आऊ।
0: हाँ जी
1: पर समें दी जिवें निकलदा गया
0: हाँ जी
1: हुण थोड़ा बहुत जिहड़ा खर्चा है
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: भी ज़्यादा हो जाता है,
0: बिल्कुल जी
1: इस करके कुछ ना चाहते हुए भी बचत जिहड़ी है
0: हाँ जी
1: वो इंसान करना तो चाहता है
0: बिल्कुल जी
1: पर बचत हो नहीं पाती।
0: गल तुहाडी सही है। कोई समां सीगा कि बचत नूं सब तों वध अहमियत दित्ती जांदी सी। आपणे तां पंजाबी दा मुहावरा कि बाणी कंठ ते पैसा गंठ, वी पैसा जिहड़ा कोल ही आ उही आपणे दा
1: उही
0: हीरा आ।
1: अपना है।
0: बिल्कुल जी परिवार जिहड़े आ उह सांझे सीगे। उहनां समयां विच तां देखो जी बचत घट वी हुंदी तां वी सर जांदा सी, फिर भी लोक बचत करदे सीगे। हुण तां जिहड़े आ उह छोटे परिवार आ, ते हुण तां बचत बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है।
1: बहुत जरूरी हो गई। देखो ना जी आमदनी विचों कुछ हिस्सा
0: हाँ जी
1: भविख विच बचा के रखना।

0: जी
1: बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल जी,
1: हाँ जी,
2: हाँ जी
1: अज की गई बचत भविख के लिए साड़ी जी अनिश्चितता होंगी है
2: हाँ जी
1: वनू घट करती है,
2: बिल्कुल जी,
1: तो जे असी बचत कर लीए
2: हाँ जी
1: तो वो साढ़े लिए फिर औखे टाइम पर
2: बिल्कुल जी,
1: साढ़े लिए लाहेवंद होंगी।
2: सही गल है जी,
1: तो इस करके सानू सारयानू
2: हाँ जी
1: ये बचत दे लिए ना इदां दा कोई ब्योतबंदी बनानी चाहिए है
2: हाँ जी
1: कि असी जे साड़ी आमदनी जिनी भी है
2: बिल्कुल जी,
1: वह 10 या 15%
2: हाँ जी,
1: जे असी वह बचा के एक खाता जहा बना
2: हाँ
1: लीए,
2: जी
1: चाहे उन्होंने बैंक च जमा करा लो,
2: बिल्कुल जी,
1: चाहे आप अपनी संदूकड़ी च रख
2: हूँ
1: लीए।
2: तो अपने को तरीके बहुत है बचत करन दे जी, हाँ जी
1: हाँ देखो ना वो तरीके तो है, जे असी उन्होंने थोड़ा जहा एक ब्योतबंदी इदा की बना लीए
2: बिल्कुल जी,
1: जिदे नाल फिर ये औखे वेले
2: हाँ जी,
1: ये बचत सानू कम दे सके।
2: तुसीं ये देखो जी, जो तो नोटबंदी हुई है तो अपनी जिहड़ियां बजुर्ग मातावां ने उन्हां कोल जिहड़े आ उह मतलब लखां करोड़ां दी गिणती जिहड़े आ उह नोट निकले, उह बचत
1: निकले
2: करके निकले,
1: ता ही निकले ना,
2: बिल्कुल जी,
1: देखो जदों वो बचत चो पैसे निकले
2: हाँ जी,
1: उदों कितें आपस दे विच अणबण
2: हाँ जी
1: भी हुई भाई,
2: बिल्कुल जी
1: मैनू तो दस्या नहीं तू
2: सही गल है जी,
1: पर ये चंगी गल
2: हाँ जी,
1: है जी, वो जिहड़ी बचत कीती सीगी
2: हाँ जी
1: वो बाद दे विच फिर
2: कम आ गई
1: सानू
2: जी,
1: कम आई
2: सही
1: है,
2: गल है जी,
1: तो ये बचत सानू हमेशा बना के रखनी चाहिए
2: हाँ
1: है।
2: जी, हाँ जी,
1: पर असीं ये कह सकते हैं जी बचत करने वाला व्यक्ति जिहड़ा है
2: हाँ जी,
1: वो कदे भी मुसीबत च नहीं फसता
2: हाँ जी
1: है जी, इस करके सानू बचत सानू सारयां नू आर्थिक तौर पर मजबूत करती है।
2: बिल्कुल सही गल है जी, हाँ जी,
1: तो ये फिर सानू एक आदत भी बनानी चाहिए
2: हाँ
1: है,
2: जी,
1: ते नाले एक इदां दा आपां नू कोई ब्योतबंदी बनानी चाहिए है जिहदे नाल साडी हर महीने
2: हाँ जी,
1: कुछ ना कुछ पैसा असीं उहदे विच रख सकीए,
2: वो चाहे 5-7 हज़ार ही आपां जुड़ी जाइए,
1: जिद्दां भी तुहाडी आमदन
2: वो
1: है।
2: पता तो बाद च लगता जदों आपां लोड़ पैंदी है, बंदा कहिंदा आह अमाउंट जिहड़ी आ मेरी साइड ते पई हुई है, बिल्कुल जी
1: वो फिर सानू उस वेले कम
2: कम आ
1: दिंदी
2: जाती है,
1: है
2: बिल्कुल
1: जी।
2: जी,
1: तो दो कबोल गीत दे सुन
2: सुना
1: लीए।
2: दिओ जी, जरूर सुनते हैं जी,

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov।

जी हाँ, काम करना जरूरी है जी, काम करना पैना है, काम तो असी भज नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है जो सानू उस काम का रिजल्ट नहीं मिलता जो असी सोचा होंगे, जो असी चाहिया होंगे, जो असी उम्मीद की होंगी है कि बई मैं यह काम करा तो उसका फल मैं यह मिल जाएगा, मैं इन्नी मेहनत करा तो उस तो बाद मैं यह सब चीज़ा जड़िया ने मेरा नाम होएगा, मेरी इज्जत होएगी, मैं शोहरत मिलेगी, मैं इन्ना पैसा मिलेगा। जो ये चीज़ा नहीं होंदिया काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, तो फिर इंसान हार जाता है, फिर वो उम्मीद छड़ देता है, फिर वो उसका काम करने के उत्ते विश्वास ही नहीं रहता कि वह सोचता है कि की करना है, इन्नी मेहनत करने का फायदा की है जेकर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा मैनू मेरे मुताबिक। और इत्थे ही असी गलती करते हैं कि ठीक है अज हर कोई काम कर रहा है और उसने कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर लगाई होंगी है, लेकिन गीता दे विच उपदेश आता है ना कि इंसान का जड़ा फर्ज है वह कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो फिर रब देगा। कि बेशक तुसी बहुत मेहनत की होवे लेकिन तुहानू उस दे अकॉर्डिंग बहुत घट जड़ा है फायदा मिलिया होवे वह तुहाडे वस विच नहीं हैगा और उस दे बारे तुसी सोचना भी नहीं। कहिंदे कि जदों इंसान कोई भी काम करे तां उस दे रिजल्ट दे बारे बिल्कुल भी ना सोचे, बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे कि मैनू इस चीज़ के बदले यह चीज़ मिलेगी, क्योंकि जदों असी उम्मीद

0: बहुत प्यारा गीत, बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी नू सेध देन वाला। प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर तो। बेला हो गया जी एक छोटे जे सुने हेदा, आओ सुनते हैं।
1: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है जी जिंदगी हसीन है। जी जिंदगी नूं हसीन बनाउण दा सौखा जिहा फॉर्मूला जो असीं बहुत वारी इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस कर चुके हैं, दस भी चुके हैं, कि सुन भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं, लेकिन ना उस दे उते मतलब अमल करना बड़ा औखा जा हो जाता है। है तो जिंदगी नूं जीण दा बहुत एक सौखा जा फॉर्मूला जो कि बहुत सारे साढ़े अवतारा ने, पीर पैगंबरां ने, महात्मा बुद्ध का नाम इस दे विच सब तो पहले नंबर पर आता है कि जिंदगी नूं कहिंदे जेकर तुसी सुख दे विच जीना चाहते हो तो प्रेजेंट दे विच जीओ, ना तो कल बारे सोचो जड़ा बीत चुका है, जो हो गया वह हो गया, उस चीज़ नूं तुसी बदल ही नहीं सकते, तो इस करके उस दे बारे नहीं सोचना। जड़ा आने वाला कल है वो उसका कोई पता नहीं है, वो एक राज है, एक रहस्य है। आने वाले पल दे विच की होने वाला है कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तुसी नहीं कह सकते, तो इस करके उस दे बारे सोचण दा भी कोई फायदा नहीं है। तो जेकर जिंदगी नूं सुखमय तरीके दे नाल जीना है ना तो प्रेजेंट मोमेंट

बिल्कुल जी, जो होना होगा होगा, वही सोच के तू क्या पाएगा। मतलब जो होनी होनी है उसनों असी रोक नहीं सकते, तो सोचन का कोई फायदा नहीं है। इस करके कहते कि जो भी होएगा देखा जाएगा। लेकिन हर चीज़ नू इन्ना ईजीली लैके आप जिंदगी दे विच नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ा यहोजिया होंदिया ने जो इंसान नू उस वक्त संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस करके किसी अपने का साथ होना, सहारा होना बहुत लाजमी होंदा है। तो जेकर सहारे ना हो, इंसान कल्ला रह जाए, फिर वो हौली हौली कल्ला रहना भी सीख जाता है। जो कल्ला रहेगा तो होर ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन जिंदगी ही है, लाइफ है, तो उदे विच असी सारे जने एक दूजे दे नाल मिल के ही चल रहे हाँ। इसलिए जेकर साडा साथ चंगा होएगा तो जिंदगी दे जिहड़े दुख ने ना, वो ज़्यादा परेशान नहीं करनगे। थोड़ा सौखे होके असी उस चीज़ चों, उस राह चों गुजर सकते हाँ। लेकिन जेकर साथ माड़ा होएगा तो जड़ा चंगा वक्त भी है ना, वो भी माड़ा बन जाता हुंदा है। असी इहो जे लाइफ दे विच एक्सपीरियंस भी किए हुए ने कि हाँ बई, जेकर थोड़े नाल दे थोड़े साथी, थोड़े दोस्त मित्र रिश्तेदार सब चंगे ने, तो खुशियाँ ही खुशियाँ खेड़े खेड़े हो जाते हैं। दुख दे विच भी वह आके जो थोड़ा सहारा बनते हैं तो दुख भी हौले हो जाते हैं। लेकिन जेकर उ कुछ यहोजे दोस्त मित्र भी होंगे ने, रिश्तेदार भी होंगे ने, कि खुशी वाले माहौल दे विच आके भी कोई ना कोई यहोजी गल कर देंगे ने कि वह खुशी वाला माहौल ही गमगीन हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहोजे साथियों तो यहोजे मतलब लोगों तो सानू जरूर गुरेज़ करना चाहिए है, जरूर थोड़ा दूर रहना चाहिए है, क्योंकि संगति जड़ी होंगी है ना इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है। एग्जाम्पल देंदे होंगे ने, कहें कि जेकर तुसी सारा दिन मछली बाज़ार दे विचों घूम के आ जाओ ना, बेशक तुसी मछली ना खरीदो, लेकिन जड़ी उसकी बदबू होंगी है, उस स्मैल होंगी है, वह शाम तक तुहाडे कपड़ियां दे विचों आनी शुरू हो जाती है, बेशक तुसी ना खरीदी होवे। इस तरह कहिंदे कि जेकर तुसी सारा दिन किसी परफ्यूम की दुकान दे विच गुजारिया होवे, बिना परफ्यूम खरीदे भी जदों तुसी उस दुकान तो बाहर निकलते हो ना, तो तुहाडे कपड़ियां दे विचों खुशबू आ रही होंदी है। इस करके माहौल का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुंदा है इंसान दे उत्ते, बहुत ज़्यादा असर हुंदा है। इस करके कोशिश करिए कि जिहड़ा साडा आस पास का माहौल होवे ना, आस पास के लोग होण, वह वधिया होण। नेगेटिविटी तो असी जिन्ना दूर रहांगे उन्ना ही वधिया रहांगे। साडा साथ जेकर उन्हां लोगों के नाल है जो सानू दिलों चाहते ने, जो साडी दिलों तरक्की चाहते ने, तो इंसान जरूर एक दिन तरक्की कर जाता है। लेकिन जेकर साथ माड़ा है, जिहड़ा उत्तों तो बहुत चंगे बनते हैं लेकिन अंदरों जड़ा है तुहाडा बुरा सोचते हैं, तो कितना कितने वह बुरा कर भी देंगे। तो उन्हां चीज़ों तो बच के ही रहना है। कोशिश करिए कि साडा जड़ा माहौल है, जिस चीज़ के विच असी विचरते हाँ, जिन्हां लोगों के विच असी विचरते हाँ, घट्टो घट वह जरूर चंगे होण, वह जरूर वधिया होण। तां जिंदगी इस तरह ही इन्हां छोटिया छोटिया चीज़ों के नाल खुशनुमा बन सकती है। कोशिश करनी है, अमल करन दी कोशिश करनी है, सिर्फ सुनना या कहना नहीं है, क्योंकि सुनन नाल ते कहन नाल कुछ बदलन वाला नहीं है, करन दे नाल ही बदलदा है। ते हाँ, फिर जांदे जांदे इसे ही साथ दे उत्ते असी गीत सुनते जाने कि जेकर साथ चंगा होए तां हर चीज़ जड़ी है वो वधिया हो जाती है।

0: दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा

0: और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
4: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह

0: के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 बज चुके ने। हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार। सियाने कहिंदे ने कि जे असीं अपने हस्पताल खाली करना चाहुंदे आ ते सानू फिर अपने खेड दे मैदान भर देने होंगे। जे ज़्यादातर लोग खेडां दे मैदान विच होंगे ते हस्पताल अपने आप खाली हो जाएंगे। जिस तरीके दे नाल असीं पंजाब वासी

0: सरगम दा अगला नगमा फिल्म मन चली तो आवाज़ा किशोर कुमार ते लीना चंद्रवरकर दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी।

प्रोग्राम सरगम दा अगला गीत फिल्म ही राजा तो आवाज़ लता मंगेशकर दी, गीत दे बोल कैफी आजमी दे ते संगीत मदन मोहन दा।

प्रोग्राम सरगम दा आखरी नगमा फिल्म सूरज और चंदा तो आवाज़ मोहम्मद रफी दी, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे, ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे

0: विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
0: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the agreement on social

जी बिल्कुल जी। माई वे माई नूं वेखण दे लई चरखा दा डाह लिया गया है ते जी हुण फिर असी भी प्रोग्राम लै के हाज़र हो गए हाँ जी। हैडफोन भी लगा ले ने ते फोन लाइन भी ओपन कर दिती है ते व्हाट्सएप भी ओपन है जी। ते बस तुहाडी उडीक प्यारी जी सुनेहे ते प्यारी जी कॉल दे लई ते जुड़े ने साडे नाल सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका अमनदीप सिंह ते कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज जी स्वागत तुहाडा सारयां दा। मजनू कटला दिल्ली तो प्यार भरी सत श्री अकाल भेज रहे ने जी। कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक गुड़िया माही मलिक ते इशिता अरोड़ा स्वागत तुहाडा भी। ते सुखबीर सिंह जी शामिल हो गए ने।

जी दिल पागल ते लग गईयां ने यारियां, पर बिल्कुल जी एक रिश्ता ये भी है जिहड़ी जिहदी गल दिल दी जिस दिल दी गल जिहड़े दिल दी गल अमरिंदर गिल ने इस गीत विच कीती है। ते पर इसे तरह दा एक प्यारा जिहा रिश्ता तुहाडा साडा भी सारिआं दा बणिआ होइआ है जिहदे विच दिल पागल नहीं है, मैं कहांगा कि दिल सियाणा है, कि क्योंकि सियाणे लोकां दे नाल चंगे साढ़े इस प्रोग्राम रेडियो दे नाल जुड़े हुए लोगों के नाल साडा दिल लाया जी। ते स्वागत करदा बहुत बहुत सारे स्रोतों का, वट्सएप पर सुनेहा आया जी सानू डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया जी का पटेल नगर मलोड़ तो, ही उन्होंने गीता राणी जजोरिया जी, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया तो गुड्डू जी जुड़े हुए हैं जी। तो फरमाइश भी आई है जी सानू ए माई मुंडा गी ए फिल्म दे गीत ए मोर क्यों पहला पाउंदे ने, सुणांगे जी फिर यही गीत। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार ने फरमाइश भेजी है जी, मुकेश बत्ता जी, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता जुड़े हुए ने। और पिंड कैरों जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन जी, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद अते उन्हां दा पोतरा गुरशब्द, ये सब जुड़े हुए ने जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। ते नथुराम शर्मा जी, ललित शर्मा जी, इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा भी जुड़ चुके ने मंडी हरजी राम मलोड़ तो। लो जी अगला गीत सुन रहे हैं जी, मुहम्मद रफ़ी ते दिलराज कौर की आवाज़ च गाया होया।

0: प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत ते सुन रहे सी ये गीत मोहम्मद रफ़ी ते दिलराज कौर की आवाज़ के साडे अगले फोन कॉलर जुड़ चुके हैं साडे नाल आओ कर दें जी उन्होंने गल बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा।
1: हेलो सर जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी शरण जी की हाल चाल।
1: बहुत वधिया सर आज मेरा अपना परिचय देना नहीं पिया तुसी दस सकते।
0: हाँ जी हाँ जी तुसी क्योंकि जी देखो ये है कि तुसी बड़े दिनों बाद कॉल लाई ते पर मैं तुहानू ये दसना सीगा मैं तुहानू ये जताना सी ना कि भी मैनू नहीं याद मैनू ही तुहाडा नाम जिहड़ा भुलिया या तुहाडी आवाज दी या बिलकुल पूरी याद है मैनू। जागना जी किसे किसे नूं मिलदा।
1: शरण
0: जी फरमाइश ते अगला सॉन्ग मेरे वर्गा।

असा टूर न पराए अज मुल्के, असा टूर न पराए अज मुल्के, नी गंगी ये बदामी रंगी, नी रोका पावी ना रिजक टुकरावी, ना मैं सोने दा।

प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत एक बार फिर तो सब का करता हाँ प्रोग्राम के स्वागत साढ़े को प्रोग्राम दे जी बाकी जो समा बाकी है

ओ मेरा छोटो इफ्तकंदरी दी ऐनक काली होई, मेरा छोटो इफ्तकंदरी दी ऐनक काली होई, लाज नैणा दी मर गई सारी ऐनक हेठल कोई, तक तक मुंह विच उंगलां पाउंदे पिंड दे सारे दाने हानने ना जानी ना जा देश।

ताने मार सतौन ने चढ़िया सौन दिया कदों कमलिए हुंदियां रुत्तां रूप गवाउण दियां।

राम राम बोल बोल खोजते बड़पागी, हर का पंथ को बतावे हौ ताकै पाए लागी। खसम प्रभु दी पाल विच बिरहों कुठी आत्मा, परमात्मा दी पाल लई प्रभु दे नाम दे रसियां दे चरण परसदी हुई बेनती करदी है कि कोई हर प्रभु दी प्राप्ति दा मार्ग दसे। चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी राग देव गंधारी विच उचारे गए शब्द विच भी एहो जही जिग्यासा लै के बेनती करदे ने। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेरो सुंदर कहा हो मिला कित गली, हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर।

कित गली हर के संत बतावा मार्ग हम पीछे लाग चली। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। प्रभु पति नालों विछोड़ा कष्टदायक हुंदा है, दूरी लम्मेरी पास दी है, इंज महसूस हुंदा है कि पिर परदेस सिधाए। तंजीव रूपी स्त्री सज्जन प्रभु नु मिलाप लई सुनेहे कलदी है। राग तुखारी विच उचारे गए शब्द विच ऐसी अवस्था दा वर्णन है। साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी, सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इसे शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी संतोख सिंह।
1: साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन भरेंदी मुंद नैन भरेंदी गुण सारेंदी क्यों भरा मिलां प्यारे मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा क्यों पाइए पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुनी तन मन आगै राखै नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै। गुरबाणी आशे अनुसार हरेक मनुखी आत्मा उस परमात्मा रूप पति दी जीव स्त्री है। मनुखा जन्म धारण करन वालियां सारियां आत्मावां दा मूल मनोरथ उस परमात्मा विच अभेद होना है जिस तों वह विछड़ के आईयां हन। अजिही अवस्था दा बयान इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। ये पावन शब्द मनुखता दे रहबर कलयुग दे तारनहार धन धन श्री गुरु नानक देव जी का उचारिया होया है। जेड़ा कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कत्ती रागां विच्चों बाईवें राग तुखारी विच्चों लिया गया है। ये राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1107 अंग तों लै के 1117 अंग तक दर्ज है। अते विचार अधीन शब्द पावन अंग 1111 उपर सुभायमान है। इस संपूर्ण शब्द दे 4 बंद हन जिस विच्चों तीजे बंद दी व्याख्या करन दा यतन करदे हां। इस पावन शब्द की आरंभता विच श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे हन साजन दे

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 607 ते फरमान है, गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रगासै, सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह यों कुसुम सवासै। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रवासै, देखत दरस पटक परम पज्जत दुख पर हर सुख सहज बिगासै। सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सुभासै, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो।

मनसाकार से मरंत तुझे नर, काम क्रोध मिट्यो जो तनंग, बाचाकार से मरंत तुझे तिन दुख दृद्र मिट्यो जो खणंग, कर्म कर तो दर्श परस पारस, सर बल पत जस गायो, श्री गुरु।

0: जोग भोग संजुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज आ पग दल।
1: तू सतगुरु चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहुल अगम निगम उदरन जरा जमे आरोह गुरु अमरदास तेर थप्पे आओ परगामी तारन तरन अगंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी सरण।

सूद जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का हिता पांडे कात ना टुटे ना मन लगे ना एह जले ना जाए तन सुमान सुनान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुल अनाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओह मुआ ओह चढ़ पया।

0: अंतर पूजा पढ़कते पा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री विगायन तन गलताग तिन कर ब्रह्मण पुरे नाद उना पे आवे ओई साथ कुड़ी रास कुड़ा पार कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक उड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ सूर्य जगसाई नील वस्त्र पहरों में